समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रीरामचन्द्र करुणा समुद्र ध्यातो तुझे राजस योग मुद्रा पूर्ण वैराग्य जाते

श्रोताओं, अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी ने।

एकपारी त्रिशूल द्वारी वर उधळे भंडार वर उधळे भंडार नाथ निरंजन सद्गुरु स्वामी घेतला ते अवतार देवा लोटला।

पड़े कतारी त्रिशूल द्वारी वर उधड़े भंडार वर उधड़े भंडार नाथ निरंजन सद्गुरु स्वामी घेतला ते अवतार देवा लोट

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने, गाया है मन्ना डे ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित राजन और साजन मिश्रा और एस जानकी, इनके स्वरों में वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

यस्य योगमुद्रा नेत्रीनयने तुजवीणनिद्रा सुभद्रा शुकासारिके

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने, गाया है मन्ना डे ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित राजन और साजन मिश्रा और एस जानकी, इनके स्वरों में वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी ने।